बड़ा लाभ है, इनकम ऑफ कोर्स विल बी गिवन टू। इस प्रकार मन में विचार कर जाने इच्छा करते हैं। श्री बोले कि मंगल रूपिणी व्हेन ही लिसन्स टू द वर्ड, व्हेन ही लिसन्स टू द वर्ड्स ऑफ कोर्स ऑफ हिज दुल्हन, तेरे घर में कुछ भेद को टेक तो लो, दैट व्हाट डू वी हैव टू टेक फॉर हिम। यह सुन सुदामा की श्री किसने पड़ोसी के घर चार मुतों को चावल, दे हाउस डू हैव एनी फूड, दे हाउस डजंट इवन हैव फूड, सो ही गो बाय द नेबर एंड ही बोरो फॉर हैंडफुल ऑफ राइस, बोरो चार मुत्था को चावल हो, यू नो व्हाट काइंड ऑफ राइस, यू नो राइस केक दैट यू ईट, व्हाट इट इज कॉल्ड राइस केक, सो चावल मांग लय को सुदामा को कपड़े को बांध लगे, यानी टुगेदर ही टाइड अप इन हिज क्लोज। हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र भेद के कर सुदामा को निवेदन किया, एंड ही स्टार्ट्स नाउ, ही डिसाइड्स दैट ही विल गो टू लुक फॉर भगवान श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार को ब्राह्मण श्री सुदामा चावल को श्री कृष्णानंदन चंद्र, and he leaves of course to go where, to go to Bhagwan Sri Krishna.

पेतमलिमन वस्त्र पहने और दुल बल कारण जिनके अंगों ने रही ऐसे सुदामा ब्राह्मण साक्षात देवी रुक्मिणी को हैं। गॉडेस रुक्मिणी इज लुकिंग एट हिम एज इज डिस्क्राइब बिफोर और चामर तो पकड़ हत्या दे रहे शी स्वानिंग करने लगे हे राजन। इस प्रकार निर्मल कीर्ति वाला भगवान श्री कृष्ण जब सत्कार की किया है तब दूत सुदामा को देख सब द्वारे उसको आश्चर्य मानने लगे। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज श्री कृष्ण हैज विद दिस पॉर ब्राह्मण दिस पॉर बॉय दैट कम्स। श्री कृष्ण लिविंग इन अ पैलेस ईटन ऑन गोल्डन वेसल्स has servants, thousands of servants serving him. He is the Lord of the three worlds. What it is he has with this poor and ill-clad Brahman. और कहने लगे हे भिक्षा मांगे वाले दरिद्र को नींदित अधम पेत वस्त्र वाले सुदामा से ऐसे क्या पुण्य है। And more so, what merit does he have that allows him the opportunity for the Lord of the three worlds to serve him like this? क्योंकि जैसे बड़े भाई बलदेव जी के मिले प्रकार त्रिलोक के गुरु लक्ष्मी निवास श्री कृष्ण शयन पर उपे बैठे अपने प्रियतम रुक्मिणी त्याग को इसमें मिले। व्हाट टाइप ऑफ लव एंड डिवोशन और व्हाट कनेक्शन इज देयर दैट द एल्डर ब्रदर ऑफ बलदेव एंड द लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी वुड लीव हिज कंसोर्ट टू मीट विद सच ए डिवोटी। इसके अपरंत सुदामा श्री कृष्ण परस्पर हाथ पकड़े के जब गुरुकुल पे पास के तब को बात करने लगी। They started to reminisce on the days that they were young. So, Bhagwan is explaining, Parikshit is listening. Two stratas of society, the upper and the lower. Sudama is poor, daridrata brahmano. Wealth-wise, not good. Knowledge-wise, very good. Endowed with the veil. Bhagwan Sri Krishna is there. भगवान बोले कि हे धर्म के जाने वाले ब्राह्मण दक्षिणा में गुरु के पास हमको विद्या पकड़ आए तब से तुमने घर को आकर हाउ हैव यू बीन सिंस यू वी लेफ्ट गुरुकुल योग स्त्री विवाह के थे या नहीं है यू हैव गॉटन मैरिड एंड सो फॉर्थ। विवेक मित्र दामा मैं निश्चित जानता हूँ तुम्हारा चित्त को विषय बहुत चलमान नहीं है घर में वस्त्र तुम्हें आई यू नो आई हैव नॉट सीन यू इन क्वाइट अ व्हाइल बट व्हाट इज देयर दैट द लॉर्ड डज नॉट नो Everything that we can think that we can hide from Bhagwan, there is nothing. यदि कि चाह ना हो, तो घर में के रखने के आप प्रयोजन इसके उत्तर कृष्णा is everything good at home. And do you remember, of course, our days in Gurukul? एक गुरु ब्राह्मण चत्र हो, इस चाकर के एक परम समान को कमलियाँ निये हैं. Know that I have, of course, great love in my heart for the Bhakta. Om Namo Bhagavate. हे मित्र डू यू रिमेम्बर ऑफ कोर्स लकड़ी को लेने हम तुम एक महाबन पे गए हैं रिमेम्बर व्हेन वी वेंट टू फेच फायरवुड फॉर आवर गुरु वन डे यद्यपि बड़ शीर्ड तो नहीं है वी डिडंट नो दैट रेन विल फॉल परंतु भी की महात्री पवन को सात वर्ष है देन टॉरेंट रेन द ब्रीज स्टार्ट ब्लो एंड रेन स्टार्ट फॉल लगी और अत्यंत घोर कठोर गर्जन हुआ है the weather got so terrible इतने भी भगवान के सूर्यास्त हो गए संपूर्ण दिशा अंतर को छा गया है स्थल we got lost there because sunlight was not there and remember ओ ब्राह्मण वायु के कर्षे से तुम दोनों पीड़िता को प्राप्त दिशा कुछ सुध नहीं रहे हैं we stayed the night and it was trembling until they found us in the morning days A little story that is taken and shared. It's not mentioned in the Bhagavad, but it's something that our old pandits used to share. They often mentioned that Sudama went with the Guru Mai, give them a little bit of snack, chana. And Sudama went and, you know, when rain hit you and you, Bauchar hit you and you play school, you just started trembling. When you started trembling, what is Amdi Yatit? What Amdi Yatit? Started knock knock, kach kach, cut cut, knock like this now. When you say it started get cold, I asked Mahadev how he survived in that coldness. If he did, don't knock. So we walk with this and Krishna walking in front, Sudama walking behind. So when the rain fall and hit them and they close wet, Sudama get hungry.
putting in mouth and eating. Krishna asks him, what going on, Devai? You are eating something or? He says, no, it's making cold when teeth knock in. So what you say, Bhagwan, you? He says, you are Shastradama? He says, yeah, Bhagwan. Yes, yeah, Krishna. Just something, I eat and nothing I think. When we deprive ourselves from giving in the name of the Lord, that is what results in our wealth being taken from us. For that one moment, he didn't give the Lord. So Bhagwan says very beautifully that he recalled all of this Sandipan Guru ke ham ke thode thode aaye. Remember those days? Bhagwan ki gamatra. Then he goes on to Shri Kancha Prem Gochitavani Dekhe aur Hans se poochhe Sudama bole ki hey Brahman tum mere liye kya bit le aao that oh my friend you come so long you come to see me you bring anything for me kyunki bhakti prem purvak jo mujhe thoda so bhet dete hain bahut kho jate hain jo bhakti bina mujhe bahut ke bhet ho I accept anything that is given with love. There's a song that we sing. Sabse

Patram Pushpam Phalam Toya Yamakte Prayachari Bhagavan. Same verse from the Gita is taken. That anything that is given to me with love, doesn't matter what it is, fruit, flower, leaf, drop of water. इसके कारण उसके प्रसन्न पूर्वक भोजन को करता है राजा परीक्षित. इस प्रकार भगवान को कहा तो अब लज्ज मारे को नीच मस्तक को विराजमान सुदामा को सुदामा को लक्ष्मी को पति श्री कृष्ण चंद्र तंदूर नहीं दिया है. When he see where the Lord is and what the Lord has, he is thinking, he feels shame, लज्जित हो गए हैं. He feels ashamed to even take out what he bring for the Lord when he see what the Lord have and where the Lord live in and what the Lord is served, how the Lord is served by. He feeling shame now to take out whatever little thing he get. Birajman ko tandul, he never give it. और जो पुरुष भक्ति से इस प्रकार भगवान जब तो कहा लज को सुदामा लक्ष्मी के हे राजन साक्षात तब प्राणियों को साक्षी भगवान श्री कृष्ण the all knowing lord who is the witness of everything भगवान श्री कृष्ण सुदामा का आने का विचार करने लगे कि धन की चाहना करके सुदामा मेरे भजन नहीं किया है. He come with a purpose. He come to ask me, but he wouldn't ask out of his humility and his modesty. He will not ask in the scriptures. Three types of bhakti, many categories, but there are three types of bhakti. First one is called Sakamya bhakti. Sakamya means the devotee start praying because they want something material. You're praying because you want to get something. This is called Sakamya bhakti. But during the, while you are undertaking the upasana, while you are doing the prayer or the pujan or the japa or whatever it is, because of the increase and the rise in the bhakti, you begin to detach from it. So although you started off wanting it plenty, by the time you get to the end, the craving for it starts to disappear. Just as the bhakti increases incrementally, the craving for it decreases incrementally. And when it goes down, you get to a point that you don't want, so it becomes nishkamya bhakti. And from the craving diminishing, it disappears altogether. It's called parabhakti. Om namo bhagavate vasudeva. It disappears altogether. So this is Bhagavan Sri Hari. This is what he says. And when this took place, he did not ask anything. Om namo bhagavate Vasudeva. He has come with a purpose, but he will not ask because of his modesty. अभी उसने अपने पति बता को श्री प्रसन्न करने हैं मेरे पास आओ. He has come here. Sri Krishna is thinking. He has come here because of his dulahin. She has asked him. इसलिए जो संपत्ति देवता अभी दुर्लभ है इस संदूगा. That which is very difficult for even the devatas to get. इस प्रकार विचार चीत में बारी हो चावल को यक क्या है. भगवान spotted. And when he spots it, he grabs it. यक क्या है. What is this? ऐसे कहा चावल सुदामा को वस्त्र को पहने ले लिए. He grabs it. And when he pulls it, and he snatches, when the Lord snatches and he sees it, एक मुट्ठी को चावल. He sees it and first handful taken, eat mouthful. केशव मूर्ति बोले कि हे मित्र सुदामा यह तुम चावल ले आओ हो मुझे अत्यंत प्यारे लगे हैं. You know that I like this and yet you are keeping it away from me. इनको थोड़ा मत जाना चावल मेरे सब निष्कल भेद बड़े देंगे. How long I have not tasted anything now it is given to me. इस कहा कर एक मुट्ठी को चावल भोजन कर दूसरे मुट्ठी को खाकर जब तीसरे मुट्ठी के कहानी रहा. Eat one mouthful, eat two. When he go to take the third one, he goes to take the third. Tab Krishna Parayan Rukmini Parameshri Sri Krishna Chandra heart pakada. Rukmini grabs his hand. She is incarnation of Lakshmi. Kahane lage, he mitra, ghar ki sab vastu hi bhojan hai, karao, kuch bhe rahenga dunga. Oh my beloved, careful what you are doing. एक तो है इसलिए आकर हाथ पकड़े दूसरी कारण के आगे कहते हैं
When you ate the first, you gave him everything in this world. Aur dusre kaadan. Aage kehte hain. And with the second, you gave him everything in the world above and the heavens. Rukmini bole ki विश्व आत्मा एक मोती चार भोजन करके सब विश्व को संपत्ति करके है. अब तीसरी मोती, इफ यू गिव हिम द थर्ड, इफ यू ईट द थर्ड वन फ्रॉम हिम, भोजन करे क्या मुझे दे दूंगा, देन यू विल हैव टू पार्ट विद मी. इन अदर वर्ड्स, देन एवरी सिंगल थिंग दैट इज पोजेस्ड बाय श्री कृष्ण वुड बी ट्रांसफर्ड टू सुदामा. सो शी स्टॉप्ड हिम, शी सेज नो माय लॉर्ड, क्योंकि लोक परलोक को तुम्हारा संतुष्ट होने, यू हैव ऑलरेडी गिवन हिम दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस एंड द हैप्पीनेस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड. इफ यू गिव हिम मोर लॉर्ड, आई विल हैव टू पार्ट विद यू. इंद्रपवन परीक्षित ब्राह्मण सुदामा को रात्रि को कृष्ण चंद्र मंदिर के भोजन कर भगवान परीक्षित इज बीइंग टोल्ड सुदामा स्पेंड द इवनिंग एंड जल सुदामा को प्रमाण कर मार्गे पहुंचा पीछे पीछे संगाई. तो बोले हे मित्र सुदामा, तुमने भला दर्शन दिया और इस प्रकार लाज मारे मांगो एनीथिंग दैट यू वांट आस्क. श्री कृष्ण दर्शन होने सुख पाकर अपने घर को चला गया. ही लीव एंड ही वेंट अवे एंड ही नेवर आस्क्ड. चले समय चित्र सोच ले गया हो ब्राह्मण को भक्ति बढ़ने दे वाले. द लव ऑन द साइट ऑफ गॉड वाज इनफ फॉर हिम कंटेंटमेंट. इन द स्क्रिप्चर्स देयर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग लाभ संतोषम. The greatest contentment, of course, is, you know, bhakti, devotion. And Bhagwan Sri Krishna Chandra Bhakti mein ne dekha, kyunki Lakshmi chahti dadan karne Sri Krishna ati dridhito Sudama ko chahti bala karne. He didn't do anything, and of course, except for the devotion, kairi ashcharya hai, daridra papi brahman mein kaha,

कारण करना भगवान श्री हो जाए. आई फॉरगेट टू आस्क, आई डिड नॉट आस्क, यत किंचित झन नहीं होते. एंड ही नोज दैट इफ दैट हैपेंस, बट व्हेन ही गेट्स होम क्वाइट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बहा विचित्र विचित्र बीच शोभमान, उनमें झुंड झुंड बोले रहे कुमुद भोज कहार उत्पल से. When he gets home, of course, he sees not the house that he left, but he sees something that is totally different. Sets of trees, huge houses like a palace, streams, lakes. Sringhar ke purusha harini ke tulya netra se jahan tahan hai. He is seeing, you know, persons decorate, they well dress up under there. ऐसे शोभ भाव को भयान प्रकाश शब्द शर्मानिक, ये क्या है? In his mind he is thinking, what is this? किसी स्थान है? What place is this? Where have I come to? कि अपने मन में विचार किया, क्या तुम्हारा रहने के स्थान है? This is not the place that I live. This is not the place that I reside. ऐसे कैसे होगा? How is, what is going on? How is this possible? इस प्रकार को बड़े भाग्य सुदामा देवता को समान शोभा वाले स्त्री पुरुष गाते बजाते सन्मुख लिखाने. He is hearing, गाते, singing and playing of instruments.

0: आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: सहज सुमंगल, नवग्रहों में एक मंगल की उपस्थिति एवं कृपा, प्राणियों की इह लौकिक जीवन में धन धान्य की संपन्नता प्रदान करती है। सांसारिक कर्मों में व्याप्त दुर्गुणों से परे सत्कर्मों की ओर प्रेरित करने वाले मंगल की उपासना अत्यंत फलदायी है। मनुष्य के जीवन के 7 वर्षों में मंगल की स्पष्ट उपस्थिति रहती है। इन क्षणों में मंगल के लाभकारी प्रभाव प्राप्त करने के लिए वेद पुराण एवं उपनिषदों में वर्णित मंत्र ध्यान व स्तोत्र का पाठ एवं जाप मंगलकारी है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल अपने उपासक के लिए नामानुकूल बहु फलदायक हैं। मंगल का नित्य ध्यान करने वाले श्रद्धालु संपूर्ण जीवन ऋण से मुक्त सुख शांति के सेवक रहते हैं।

0: Sitaram, you are listening to Radio Gravity 102.7 FM's Overnight Mix as we continue to inspire you. For those who are going through stressful situations, our aim is to help you through these trying times.
1: देवो में प्रथम पूज्य देव समूह के नायक प्रथम पति एक दंत लंबोदर विघ्न नाशक शिव पुत्र श्री वरद मूर्ति गणपति कर्ता हरता धरता ही नहीं सब रूपों में विराजमान ब्रह्म है। प्रातः प्रथम स्मरणीय भगवान गणपति इंद्रादि देवेश्वरों के समूहों से भी वंदनीय अनाथों के बंधु हैं। इनके युगल कपोल सिंदूर राशि से अनुरंजित हैं, जो उद्दंड विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप हैं। भगवान गणपति अपने उपासकों के लिए अत्यंत मंगलकारी हैं। सांस्कारिक सत्कर्मों की ओर सहज प्रेरित करने वाले भगवान गजानन के वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र ध्यान स्तोत्र एवं गायत्री का पाठ करने से निरंतर सत्कर्मों में तल्लीनता सजगता एवं एकाग्रता प्राप्त होती है।

0: Inspiring, enlightening, and entertaining. This is Radio Jagriti 102.7 FM's Overnight Mix.
1: देवी की उपासना से लौकिक वैभव के अतिरिक्त ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। जग जननी त्रिगुणमयी माता के राजसी रूप में महालक्ष्मी साधना स्थिति का द्योतक है। वो महालक्ष्मी अपने भक्तों को देवी संपद रूप अक्षुण्य द्रव्य प्रदान करती हैं। वो सात्विक शक्ति है, वो तुष्टि है, वो पुष्टि है। लोक व्यवहार में भी पिता की अपेक्षा माता से स्वभावतः लगाव अधिक होता है, क्योंकि माता स्वभावतः सहृदयी और वात्सल्यमयी होती हैं। ऐसी ही वात्सल्यमयी ममत्व प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी सहज ही अपने भक्तों पर कृपालु हो जाने वाली माँ हैं। धन संपदा की देवी माता लक्ष्मी नित्य प्रातः स्मरणीय हैं, किंतु बुधवार को विशेष स्मरणीय देवी लक्ष्मी शुभ मंगलकारी कल्याणकारी फल प्रदाता हैं। अपने उपासकों पर निरंतर कृपालु, भक्तों के कष्टों का निवारण भी करती हैं।

प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय. सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम. बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय.

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो

ये मेरी दादी ने मुझे दिया था और कहा था राजमहल से वनवासों तक हाथ थाम के जीना मना प्यार किसी से तुम करना तो सियाराम के जैसा करना

करो मनवा इन माय माइंड भजन करो मनवा गोविंद हरे सेज इन माय माइंड मे गोविंद ऑलवेज रिमेन एवरी टाइम आई ओपन माय माउथ मे हिज फॉर्म एंड हिज नेम

My nickname, Pita. Deha Prithibhyam Trinidadeshasya Dvitiya Padadeshi Shvetabhad Kalpe Vaivaswat Mantre Ashravinchiti Tamika Lyogin Pratam Chari Baudhavati Padabhav Sambatsara Parishitu Sravan Masi Shukla Pakshi Ekadastithau Sudye Om Sravan Masi Sudya Ko Singh Rashi Sthiti Shishank Shri Dhanush Rashi Sthiti Ravi Vari Hemant Ritu Prithvi Yog Vishti Karan Swarga Gyata Gyati Ke Nimita Mama Shruti Smriti Puranokta Palaprapti Arte Gyata Agyata Janma Suzanne Yon Mukesh Ke Nims Gyata Agyata Janma कायिक मानसिक वार्षिक जन्य पाप पुटे निकल दुख दाव भाग्य दुख दुख दुःस्वप्न दुर्निमित दुष्ट ग्रह बाधा शांति पूर्वकम धन दान आरोग्य द्विपदा चतुष्पदा शांति चतुर्वर्ग स्वान निखिला सिद्धे गौरी मानसिक श्री वत्स गोलोक स्थित गामश्च पित्री नाम निरातश्च नंद ब्राह्मण लोक प्राप्ति श्री परमेश्वर त्यम इमाम सुपूजितम सालंकार सर्वत्सम अमुगोत्राय टेकिनिम ब्राह्मण तुभ्यम अहम् संप्रददि से ओम श्री कृष्णा अर्पणम् बोलो सिश हाय टेक योर टाइम राइट एशिव कम दो यस यस होल्ड जेंटली होल्ड

Suzanne, you and Mukesh just walk around 3 times. गाओ मम ग्रंथो संतो गाओ मे संतो पृष्ठ गाओ मे हृदय संतो गाओ मध्ये वसाम्यहम् नमो गोभ्यो श्रीमतेभ्य सौरेभ्य वच नमो ब्रह्मसुताय पवित्राय नमो नमः गावम सर्वस्य सोपानम गाओ मे।

मम समोदया भक्ति बलम समर्पयामि ओम भो भो चतु षष्टि इमं बलिं प्रयता सुकुटुंब सपरिवार चार विषयकर्ता शांति का पुष्टि कर पुष्टि करता अनेन बलिना अनेन प्रियता।

0: तुम्हें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो,
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो,
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हट जाए
1: हो जाए।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।